श्रोताओं, संत नामदेव महाराज की भक्ति रचना आप सुन रहे थे राम फाटक के स्वर में। भक्ति संगीत के कार्यक्रम में अब सुनिए स्वामी स्वरूपानंद की रचना शंकर घाणेकर के स्वर में।

0: श्रोताओं, अमृता गोखले के स्वर में आप सुन रहे थे वसंत बापट की रचना। कार्यक्रम में अब सुना रहे हैं नामदेव महाराज की भक्ति रचना, जिसे गाया है दीपक पाटेकर ने।
1: भक्त विठोबाचे भोळे, भक्त विठो

संत नामदेव महाराज की भक्ति रचना आप सुन रहे थे, जिसे गाया था दीपक पाटेकर ने। भक्ति संगीत के कार्यक्रम के अंत में अब सुनिए श्रीकांत पारगांवकर के स्वर में संत तुकाराम महाराज की भक्ति रचना।

अभी आपने श्रीकांत पारगावकर के स्वर में संत तुकाराम महाराज की भक्ति रचना सुनी। इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। भक्ति संगीत का कार्यक्रम आपने सुना रागम 24/7 DTH चैनल पर। ये आकाशवाणी पुणे केंद्र का निर्माण था।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: यह है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं राग सिंधु भैरवी में सितार वादन. आज के हमारे कलाकार हैं पंडित देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय. तबले पर संगत कर रहे हैं पंडित संजय मुखोपाध्याय. तो आइए सुनते हैं राग सिंधु भैरवी में सितार वादन. कलाकार हैं पंडित देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. दिस मॉर्निंग वी प्रेजेंट अ हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंटल रिसाइटल followed by a Hindustani vocal recital. Listen to a sitar recital in the rag Sindhu Bhairavi. Our artist is Pandit Devaprasad Chatterjee. Accompanying our artist on the tabla is Pandit Sanjoy Mukherjee. Listen now to the sitar in the rag Sindhu Bhairavi. Our artist, Pandit Devaprasad Chatterjee.

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप सुन रहे थे राग सिंधु भैरवी में सितार वादन। कलाकार थे पंडित देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय। तबले पर संगत कर रहे थे पंडित संजय मुखोपाध्याय। ये है रागम, 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग मंगल भैरव में ख्याल। कलाकार हैं सीमा भट्टाचार्य। तबले पर संगत कर रहे हैं समीर आचार्य। हारमोनियम पर आपका साथ निभा रहे हैं रतन नट्टो। तो आइए सुनते हैं राग मंगल भैरव में ख्याल।

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप सुन रहे थे राग मंगल भैरव में ख्याल। कलाकार थी सीमा भट्टाचार्य। तबले पर संगत कर रहे थे समीर आचार्य। हारमोनियम पर आपका साथ निभा रहे थे रतन नट्टो। यह हमारे आकाशवाणी कोलकाता केंद्र की भेंट थी। यह है रागम, 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: You were listening to A Khayal in the Rag, Mangal Bhairav. Our artist was Seema Bhattacharya. Accompanying her on the tabla was Samir Acharya, and on the harmonium was Ratan Notto. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam, 24/7 on DTH, anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम DTH चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अनीता गोस्वामी का उपशास्त्रीय गायन। अनीता गोस्वामी अपने गायन का प्रारंभ चैती से कर रही है, बोल सैया रूठ गई लो हो रामा। दिस इज रागम DTH चैनल, एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। इन द प्रोग्राम ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक वी प्रेजेंट लाइट क्लासिकल वोकल रिसाइटल बाय अनीता गोस्वामी। शी बिगिन्स हर रिसाइटल विथ चैती, बोल सैया रूठ गई ले हो रामा।

ये थी चैती। अनीता गोस्वामी अब प्रस्तुत करती है बंदिश की ठुमरी, बोल रोको ना डगर मोरे शाम। दैट वॉज चैती। अनीता गोस्वामी नाउ प्रेजेंट्स बंदिश की ठुमरी, बोल रोको ना डगर मोरे शाम।

ये थी बंदिश की ठुमरी। अनीता गोस्वामी अब प्रस्तुत करती है झूला। बोल झूला धीरे से झूलाओ बनवारी रे सावरिया। दैट वॉज बंदिश की ठुमरी। अनीता गोस्वामी नाउ प्रेजेंट्स झूला। बोल झूला धीरे से झूलाओ बनवारी रे सावरिया।

ये था झूला। आप सुन रहे हैं अनीता गोस्वामी का उपशास्त्रीय गायन। उन्हें तबले पर संगति कर रहे हैं संतोष मिश्रा, हारमोनियम की संगति कर रहे हैं जयंत फड़के। अपना उपशास्त्रीय गायन जारी रखते हुए अनीता गोस्वामी अब प्रस्तुत करती है पीलू ठुमरी। बोल पिया की बोली ना बोल। दैट वॉज झूला। You are listening to light classical vocal recital by Anita Goswami. She is accompanied on tabla by Santosh Mishra and on harmonium by Jayant Phadke. Continuing her recital, Anita Goswami now presents Pilu Thumri. Bol, Piya ki boli na bol.

ये थी पीलू ठुमरी। अनीता गोस्वामी अब प्रस्तुत करती है बोल बाट की ठुमरी, बोल लागी तो से नैन। दैट वॉज पीलू ठुमरी। अनीता गोस्वामी नाउ प्रेजेंट बोल बाट की ठुमरी, बोल लागी तो से नैन।

ये थी बोलबाट की ठुमरी। अनिता गोस्वामी अपने उपशास्त्रीय गायन का समापन सोहर से कर रही है। बोल मोरे पिछवरवा चंदन गाज आवरो से चंदन हो। दैट वॉज बोलबाट की ठुमरी। अनिता गोस्वामी कंक्लूड्स हर रिसाइटल विथ सोहर। बोल मोरे पिछवरवा चंदन गाज आवरो से चंदन हो।

ये थी सोहर रचना। आप सुन रहे थे अनीता गोस्वामी का उपशास्त्रीय गायन। उन्हें तबले पर संगति कर रहे थे संतोष मिश्रा, हारमोनियम की संगति कर रहे थे जयंत फड़के। ये आकाशवाणी मुंबई की प्रस्तुति थी। ये है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत। दैट वॉज सोहर। यू वेर लिसनिंग टू लाइट क्लासिकल वोकल रिसाइटल बाय अनीता गोस्वामी। She was accompanied on tabla by Santosh Mishra and on harmonium by Jayant Phadke. This was a contribution by All India Radio Mumbai. This is Ragam DTH channel. Anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है गुलाम दस्तगीर खां का सितार पर बजाया राग भैरों में आला और जोड़. विलंबित और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है. तबले पर आपकी संगति की है विनोद पाठक ने.
2: This is the Ragam channel of All India Radio. We now hear a sitar recital by Gulam Dastagir Khan. He begins his recital with an alap and jod in rag bhairav. The vilambit and drutgat are set to teen taal. He is accompanied on the tabla by Vinod Pathak.

0: आप गुलाम दस्तगीर खां का सितार पर बजाया राग भैरव सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी विनोद पाठक ने। और लीजिए अब सुनिए राग शुद्ध सारंग, विंबित और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है।
1: यू जस्ट हर्ड अ रेंडिशन इन राग भैरव ऑन द सितार बाय गुलाम दस्तगीर खां। ही नाउ प्रेजेंट्स राग शुद्ध सारंग। द विलंब एंड द्रुतगत आर सेट टू तीन ताल।

0: अभी आप गुलाम दस्तगीर खां का सितार पर बजाया राग शुद्ध सारंग सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति थी विनोद पाठक ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: यू जस्ट हर्ड राग शुद्ध सारंग परफॉर्म्ड बाय गुलाम दस्तगीर खां। ही वाज अकंपनीड ऑन द तबला बाय विनोद पाठक। दिस प्रोग्राम वाज प्रेजेंटेड बाय ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

परम पुरुष हरि प्रणय वदन कमल गुरु गुहधरणी स्मरणु तरंगनाथ रमण वदन कमल गुरु

0: हव जस्ट हर्ड टू पटनम सुब्रमण्य अय्यर कृति मरीवेर दिक्कवरय्या रामा एंड्राग षण्मुख प्रिया सेट्टु आदिताल
1: इंतवरकु मरीवेरे दिक्कवरय्या रामा पटनम सुब्रमण्य अय्यर कीर्तन विन्नारु षण्मुख प्रिय रागम आदितालम
0: कंक्लूडिंग हिज रिसाइटल श्री पोपूरी गौरीनाथ नाउ प्रेजेंट्स ए जावली परुलन्न माट नम्मवद्दु एंड्राग कापी सेट्टु रूपकताल
1: कार्यक्रमलो चिवरिगा जावली विंटारु परुलन्न माट नम्मवद्दु कापी रागम रूपकताल।

0: क्लासिकल म्यूजिक चैनल।
1: ये है रागम, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत। प्रस्तुत है रविराज शंकर का बजाया बांसुरी वादन। सबसे पहले आप राग विभास प्रस्तुत करेंगे। मध्य लय बंदिश रूपक ताल में निबद्ध है और द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं शीतल प्रसाद मिश्र।

अभी आप सुन रहे थे रविराज शंकर का बजाया बांसुरी पर राग विभास। आइए अब सुनते हैं इन्हीं का बजाया राग श्याम कल्याण में एक रचना जो कि रूपक ताल में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं शीतल प्रसाद मिश्र।

ये है रागम 24 घंटे सातों दिन डीटीएच अनवरत भारतीय संगीत। अभी आप सुन रहे थे रविराज शंकर का बजाया बांसुरी पर राग श्याम कल्याण। आइए अब सुनते हैं तुश्री लक्ष्मी शंकर का गाया राग माझ खमाज में छोटा ख्याल। बोल है आली री मोरा मनहर लीन हूँ, जो कि तीन ताल में निबद्ध है।

अभी आप सुन रहे थे सुश्री लक्ष्मी शंकर का गाया माझ खमाज में छोटा ख्याल। यह कार्यक्रम आप तक पहुंचा आकाशवाणी लखनऊ के सौजन्य से।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग बागेश्वरी पर वायलिन वादन सुनेंगे. कलाकार हैं साकेत साहू. आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं अनिरुद्ध मुखोपाध्याय. तो लीजिए, प्रस्तुत है साकेत साहू का राग बागेश्वरी पर वायलिन वादन.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. दिस इवनिंग वी प्रेजेंट हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंटल रिसाइटल्स. लिसन टू अ वायलिन रिसाइटल इन द राग बागेश्वरी. आवर आर्टिस्ट इज साकेत साहू. Accompanying our artist on the tabla is Aniruddha Mukhopadhyay. Listen now to the violin in the rag Bageshri. Our artist, Saket Sahu.

0: अभी आप राग बागेश्री पर वायलिन वादन सुन रहे थे। कलाकार थे साकेत साहू। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे अनिरुद्ध मुखोपाध्याय। ये है रागम, 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत अभी हम आपको झपताल पर तबला वादन सुनवाएंगे। कलाकार हैं गौरी शंकर कर्मकार। आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं कमलाखा मुखोपाध्याय। तो लिए प्रस्तुत है झपताल पर तबला वादन। कलाकार हैं गौरी शंकर कर्मकार।
1: यू वर लिसनिंग टू अ वायलिन रिसाइटल इन द राग बागेश्री। आवर आर्टिस्ट वॉज साकेत साहू। Accompanying our artist on the tabla was Aniruddha Mukhopadhyay. This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. Continuing the concert, we now present a tabla recital. Listen to a tabla recital in Jhaptal. Our artist is Gauri Shankar Kormakar. Accompanying him on the harmonium is Kamalakho Mukhopadhyay. Listen now to the tabla in Jhaptal. Our artist, Gauri Shankar Kormakar.

0: अभी आप झपताल पर गौरी शंकर कर्मकार से तबला वादन सुन रहे थे। आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे थे कमलाखा मुखोपाध्याय। ये हमारे आकाशवाणी कोलकाता केंद्र की भेंट थी। ये रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: You were listening to a tabla recital in Jhaptal. Our artist was Gauri Shankar Karmakar. Accompanying him on the harmonium was Komalakho Mukhopadhyay. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam, 24/7 on DTH, anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत. आज प्रस्तुत है तबला एकल वादन. वादक कलाकार है मुन्ने खां. सबसे पहले आप तीन ताल प्रस्तुत करेंगे. आपके साथ सारंगी पर लहरा दे रहे हैं जय शंकर.

अभी आप सुन रहे थे मुन्ने खां का बजाया तबले पर तीन ताल। आइए अब सुनते हैं इन्हीं का बजाया तबले पर एक ताल। आपके साथ सारंगी पर संगत कर रहे हैं जयशंकर।

ये है रागम 24 घंटे सातों दिन डीटीएच अनवरत भारतीय संगीत। अभी आप सुन रहे थे मुन्ने खां का बजाया तबले पर एक ताल। आइए अब सुनते हैं उस्ताद अली अकबर खां का बजाया सरोद पर राग चंद्र नंद। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं चतुर लाल। सबसे पहले आप आलाप जोड़ झाला प्रस्तुत करेंगे, तत्पश्चात विलंबित बंदिश जो कि तीन ताल में प्रस्तुत करेंगे।

ये है रागम 24 घंटे सातों दिन डीटीएच अनवरत भारतीय संगीत। अभी आप सुन रहे थे उस्ताद अली अकबर खां का बजाया सरोद पर राग चंद्र नंद। यह कार्यक्रम आप तक पहुंचा आकाशवाणी लखनऊ के सौजन्य से।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम, हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत. अब आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शैली में ध्रुपद गायन. कलाकार हैं पंडित सियाराम तिवारी. राग है तोड़ी, जिसमें आप सुनेंगे आलाप, जोड़ और झाला के बाद चौताल में एक रचना. संगत कलाकार हैं पखावज पर पन्नालाल उपाध्याय और सारंगी पर समद खां. ये रिकॉर्डिंग वर्ष 1979 में

आप सुन रहे हैं ध्रुपद गायन, कलाकार हैं पंडित सियाराम तिवारी। यू आर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी ध्रुपद रिसाइटल बाय पंडित सियाराम तिवारी। ये है रागम, हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे राग मियां मल्हार में आलाप, जोड़, झाला और धमार। बंदिश के बोल हैं खेलन आए होरी श्याम। नाउ द आर्टिस्ट रेंडर्स राग मियां मल्हार।

अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी ध्रुपद गायन, कलाकार थे पंडित सियाराम तिवारी, संगत कलाकार थे पखावज पर पन्नालाल उपाध्याय और सारंगी पर समद खां। हर पल हर समय रागम के लिए ये थी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की भेंट। यू वे लिसनिंग टू हिंदुस्तानी ध्रुपद रिसाइटल बाय पंडित सियाराम तिवारी। द अकॉम्पनीमेंट वॉज प्रोवाइडेड बाय पन्नालाल उपाध्याय ऑन द पखावज एंड समद खां ऑन द सारंगी। दिस प्रोग्राम वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ऑल इंडिया रेडियो भोपाल फॉर रागम 24/7 एन एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है पंडित बलदेव राज वर्मा का गाया राग बैरागी.
2: This is the Ragam Channel of All India Radio. We now present a vocal rendition in Rag Bairagi by Pandit Baldev Raj Verma.

0: अभी आप पंडित बलदेव राज वर्मा का गाया राग बैरागी सुन रहे थे, और लीजिए अब सुनिए पंडित देवव्रत चौधरी का सितार पर बजाया राग भैरवी।
1: You will listen to a vocal rendition in Raag Bairagi by Pandit Baldev Raj Verma. Now listen to a sitar recital in Raag Bhairavi by Pandit Devrat Chaudhary.

0: अभी आप पंडित देवव्रत चौधरी का सितार पर बजाया राग भैरवी सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: यू वर लिसनिंग टू अ सितार रिसाइटल इन राग भैरवी बाय पंडित देवव्रत चौधरी। दिस प्रोग्राम इज अ प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel।
1: श्रोताओं नमस्कार, रागम 24/7 DTH चैनल पर भक्ति संगीत के कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं समर्थ रामदास की भक्ति रचना से, जिसे गाया है कुमुदिनी पेड़नेकर ने।

कुमुदिनी पेडणेकर के स्वर में अभी आपने समर्थ रामदास की भक्ति रचना सुनी। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं जयश्री कुलकर्णी के स्वर में संत चोखा मेळा की भक्ति रचना।

जय श्री कुलकर्णी के स्वर में संत चोखा मेळा की भक्ति रचना अभी आपने नी। आइए आप सुनते हैं दीपक पाटेकर के स्वर में समर्थ रामदास की ये भक्ति रचना।

समर्थ रामदास की भक्ति रचना अभी आपने सुनी बग पाटेकर के स्वर में। कार्यक्रम में आइए अब समूह स्वर में सुनते हैं संत भानुदास की भक्ति रचना, जिसके संगीतकार हैं बाल माई।

संत भानुदास की भक्ति रचना अभी आपने समूह स्वर में सुनी, जिसके संगीतकार थे पाल माली। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं संत तुकाराम की भक्ति रचना सौमिक शाह के स्वर में।

सौमिक शाह के स्वर में संत तुकाराम की भक्ति रचना अभी आपने सुनी। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं कुमुद कुलकर्णी के स्वर में संत तुलसीदास रची ये हिंदी भक्ति रचना।

कुमुद कुलकर्णी के स्वर में संत तुलसीदास की भक्ति रचना अभी आपने सुनी। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं चंद्रकांत काळे के स्वर में संत एकनाथ की ये भक्ति रचना।